आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम है भोर सुहानी। आप खुद को नहीं बदल सकते, मगर खुद को बदलकर औरों में बदलाव जरूर ला सकते हैं।

परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। और इसी विचार के साथ मैं आपसे लेती हूँ अनुमति। जल्द मुलाकात होगी। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। छोड़े जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: ഇനി കേൾക്കാം ഭാസ്കർ ദ റാസ്കൽ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനം വിജയ് യേശുദാസ് പാടിയത്. റഫീഖ് അഹമ്മദിന്റെ വരികൾ, ദീപക് ദേവിന്റെ സംഗീതം.

वो रुला के हंस ना पाया देर तक, वो रुला के हंस ना पाया देर तक, जब मैं रो के मुस्कुराया देर तक। भूलना चाहा कभी उसको, भूलना चाहा कभी उसको अगर, और भी वो याद आया देर तक। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक, वो रुला के हंस ना पाया देर तक, जब मैं रो के मुस्कुराया देर तक।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी इंदु पांडे। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले

0: का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया। इस बीच नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल नॉर्वे के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित स्वागत समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री जॉर्ज ने भारत और नॉर्वे के बीच मजबूत और बहुआयामी साझेदारी पर बल दिया। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वैत्री कड़गम टीवी के पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिनभर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने वर्ष 2026 में पराली जलाने की घटनाओं को खत्म करने की तैयारी की समीक्षा बैठक की। इसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आकाशवाणी के 90 वर्ष के स्मरणोत्सव के अवसर पर आज राष्ट्रीय राजधानी में आकाशवाणी एक मैराथन का आयोजन करने जा रहा है। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन के गेट नंबर 3 से होगी। ये दौड़ कृषि भवन, रेल भवन और भारतीय रिजर्व बैंक बिल्डिंग से होते हुए आकाशवाणी के रंग भवन पर संपन्न होगी। इस दौड़ में आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के कर्मचारी और उनके परिवारजन भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। The nation yesterday saluted the courage, commitment and supreme sacrifice of the armed forces on the first anniversary of Operation Sindoor. On this day last year, India launched Operation Sindoor, carrying out airstrikes on 9 terror infrastructures in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, eliminating at least 100 terrorists. It was India's befitting response to the barbaric Pakistan-sponsored terrorist attack on the tourists in Pahalgam on the 22nd of April last year. In their message on the occasion, the President, Vice President and Prime Minister

0: अजियो
1: अजियो, हमने तो पहचान लिया आपको। अब के सफर में दर्द के पहलू अजीब हैं। ध्यान से सुनिएगा कि अब के सफर में दर्द के पहलू अजीब हैं। जो लोग हम ख्याल न थे हम सफर हुए। एक बार फिर से आपका स्वागत है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। ये है हमराही, हम और आप एक राह।

अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो कि हम कहें नहीं और आपने सुन लिया, तो आप क्या कहेंगे? हर एक बात के यूं तो दिए जवाब बहुत सारे, जो खास बात थी हर बार हंस के टाल दिया। ऐसा ही कुछ होगा ना। अगर मान लीजिए कि कोई तारीफ करने पर आ ही जाए, तब क्या होगा? सोच के बताइए।

और तारीफ से जो शुरुआत शुरू होती है वो कहाँ तक जाती है इसका पता तो नहीं चलता, लेकिन हाँ ये एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। ये और बात है कि कई बार हमें साथ चलते हुए एक राह पे जिसे हम और तुम जब मिले तो हमराही बने, तो शहर दर शहर फिरते रहे, रास्ते घर नहीं जाने देते, आगे दुनिया नहीं जाने देती, पीछे बहुत सारे मंजर हैं वो नहीं आने देते। शाम आती है मगर हम घर से निकलना ही नहीं चाहते, कई बार उलट देते हैं पैमाने दिल के, न जाने क्यों उसे भर के हम फिर से नहीं जाने देते। देखिए जनाब, ये जो समय है ना, ये ऐसा समय है जिसमें बहुत सारी चीजें उलट उलट के हमारे पास आती हैं, जिन्हें हम रात की साई में ही पहचानना या फिर याद करना मुनासिब समझते हैं, और उसके बाद लगता है कि हाँ कुछ तो है जो जादू की तरह लगता है हमारे आसपास।

मौसम अगर मन का अच्छा हो, बाहर का अच्छा हो, तो फिर ऐसे ही हालात होते हैं और हर चीज अच्छी लगने लगती है। उसी में अगर रात का जिक्र हो तो फिर और भी बात बन जाती है। इसीलिए कहा गया है ना कि हमारे जो अंदर का मन है वो बाहर कई बार आने में संकोच करता है, और जब आता है तो फिर बात वहीं से शुरू होती है। लेकिन कई बार रात की जब बात आती है तो ख्वाब अपने आप चले आते हैं, और ख्वाब ऐसे कि टूटते ही नहीं। ख्वाब ताबीर में ढला ही नहीं, वो दरीचा अभी खुला ही नहीं। खाक पर रह गए हैं नक्शे कदम, और मुसाफिर का कुछ पता ही नहीं। तब आप क्या कहेंगे? यही कि हाँ, बहुत सारे वादे, बहुत सारी बातें हैं मेरे दिल में तुम्हारे लिए।

अच्छा सच सच बताइए कि मोहब्बत में जब हम होते हैं तो क्या बार बार हमें मोहब्बत है बोलने की जरूरत पड़ती है? दोनों जवाब हो सकते हैं, कोई कह सकता है कि हाँ और कोई कह सकता है कि हाँ नहीं भी, लेकिन हमें यकीन नहीं है कई बार अपनी रंगत पे, और कई बार कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जिनको हम मायने तो जानते हैं लेकिन न जाने क्यों बार बार उनको सुनने का मन करता है। ऐसा आपके साथ कभी हुआ, कभी आपने फील किया इस बात को?

न जाने क्यों मोहब्बत में कहां से ये चांद तारे शामिल हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कभी देखा है किसी ने जिक्र किया हो सूरज का? नहीं ना। लेकिन कुछ तो ऐसी चीज है इन चांद सितारों में, ऐसी शीतलता है, ठंडक है कि जब भी मोहब्बत की बात होगी तो इनका जिक्र अपने आप आ जाएगा। तुम मिले जो मुझे जिंदगी तो ऐसा लगा कि झूमने गाने लगे और गुनगुनाने लगे और फिर अर्थ जीने के हमें मिल गए। पर कई बार ये भी हम कह सकते हैं कि वो खुशी होती है, उसको लगता है कि हाँ ये बहुत दिनों तक रहे तभी अच्छा है। एक हल्का सा फिक्र होने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी गायब हो जाएगी या ये भी चली जाएगी, और इसी उधेड़ बुन में हम सब लगे रहते हैं, और शायद इसी का नाम मोहब्बत है।

शुक्रिया। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 3:38 और आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे हम राही हैं आपके साथ। ये है हमराही। हमराही मतलब राहें हमारी एक हैं और हम और तुम जब मिले तो फिर रास्ते भी शायद एक ही हो जाएंगे, और जब कोई मिल जाए तो फिर वो रास्ता कितना ही सुनसान क्यों ना हो, बड़े आराम से कट जाता है। वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता कि कब शुरू हुआ सफ़र। और सही मायनों में देखा जाए तो जो रास्ते होते हैं, जो हम सफ़र हम साथ चल रहे होते हैं हमराही, वही मेन होता है। मंजिल का मतलब मंजिल पे जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे कहानी हो सकता है कि शायद दूसरे मोड़ पे आ जाए,

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं।
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

सपनों वाली रात लिए। अगर रात है और सपने ना हो तब हर एक सांस मुझे खींचती है उस तरफ, ये कौन मेरे लिए बेकरार रहता है, क्या कभी ये ख्याल भी आता है? क्योंकि कई बार हम ये भी सोचते हैं कि हाँ, जो इंतजार है कोई जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, या सिर्फ ये हसीन ख्याल है?

हाँ मुझे उन्हीं लोगों से दुनिया में शिकायत है। हाँ मुझे उन्हीं लोगों से दुनिया में शिकायत है, वही लोग जो अक्सर हमें याद आए और उसके बाद फिर कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी वो बात नहीं हुई,

कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। इस इंतजार में बैठे हैं हम उनकी महफिल में कि वो निगाह उठाएं तो हम सलाम करें। इसीलिए कहते हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस जो बात आंखों आंखों में इशारों में हो जाए उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि जबान ने कुछ कहा नहीं और समझ में सब कुछ आ गया।

अब इसी बात पे अगर हम ये कहें कि बात हक है तो फिर कबूल करो, ये न देखो कि कौन कहता है। चले थे जिस तरफ वो निशान खत्म हुआ, सफर अधूरा रहा, आसमान खत्म हुआ, लेकिन वो वादे, वो बातें, वो सारी की सारी चीजें हमने कहीं न कहीं अपने पास गांठ बांध के रख ली है। वो इसलिए कि जब हम चाहें उस पोटली को खोलेंगे और खोलने के बाद उसमें से एक एक लफ्ज निकाल के और उसको याद करेंगे, फिर यूं न कहना कि हम सिर्फ और सिर्फ रात के हम सफर थे, क्योंकि उसके बाद भी बड़ी सारी उम्मीदें, बड़ी सारी चीजें हमारे साथ साथ चली। हम राही है ये आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे।

प्यार से बात शुरू हुई और प्यार पे बात खत्म हो गई। लो, बातों बातों में, प्यारी प्यारी बातों में वक्त भी पता नहीं कैसे चला गया। 4 बजने को है और अब समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया। इस बीच नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट

0: पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
1: पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आर एन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलग वैत्री कड़गम यानी टीवीके पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष के स्मरणोत्सव के अवसर पर आज राष्ट्रीय राजधानी में आकाशवाणी एक मैराथन का आयोजन करने जा रहा है। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन के गेट नंबर 3 से होगी। यह दौड़ कृषि भवन, रेल भवन और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बिल्डिंग से होते हुए आकाशवाणी के रंग भवन पर संपन्न होगी। इस दौड़ में आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के कर्मचारी और उनके परिवारजन भाग लेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशक जोखिम कम करने वाले प्लेटफॉर्म IRRA का उपयोग तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। सेबी ने कल जारी बयान में बताया कि शेयर बाजारों की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया क्योंकि प्लेटफॉर्म की संरचनात्मक रूप से आवश्यकता नहीं रह गई थी। ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में स्थानीय और क्षेत्रीय चुनावों के लिए मतदान संपन्न हो गया है। इंग्लैंड में 136 परिषदों की करीब 5000 सीटों और 6 मेयर पदों के लिए वोट डाले गए। ये 2024 के आम चुनाव के बाद से सबसे बड़ा चुनावी आयोजन है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में बारिश से बाधित मुकाबले में 213 रनों के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी। आज नई दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ajay Kumar. The nation yesterday saluted the courage, commitment and the supreme sacrifice of the armed forces on the first anniversary of Operation Sindoor. On this day last year, India launched Operation Sindoor, carrying out airstrikes on 9 terror infrastructures in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, eliminating at least 100 terrorists. It was India's befitting response to the barbaric Pakistan-sponsored terrorist attack on the tourists in Pahalgam on the 22nd of April last year. In their messages on the occasion, the President, Vice President and Prime Minister described Operation Sindoor as a landmark expression of country's uncompromising stand against terrorism and threats to national security. President Draupadi Murmu called Operation Sindoor as a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism and all forces that threaten our sovereignty and the safety of citizens. President Murmu said the nation salutes the indomitable bravery, sacrifice and professionalism of our soldiers. Vice President C.P. Radhakrishnan termed Operation Sindoor as a defining moment when India responded firmly to terror forces and terror-sponsoring states attempting to disturb the peace, unity and sovereignty of Bharat. In his message, Prime Minister Narendra Modi said the country remains steadfast in its resolve to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem. Mr. Modi said the Indian

4:11 होने वाले हैं। ये है अरुणिमा, और जैसा कि समय और अरुणिमा दोनों ऐसा लगता है कि बस पौ फट गई और अंधेरा वापस चला गया।

अब इस बात पे अगर हम ये कह दें कि हम क्या क्या संभालें, क्योंकि कभी छोड़ी हुई मंजिल भी याद आती है राही को, खटक सी है जो सीने में गम मंजिल न बन जाए। इसी बात पे तलत अजीज की ये बड़ी प्यारी सी गजल है, आप भी सुनिए, क्या पता आप ही के दिल का हाल हो ये।

न जाने कितनी बार शुक्रिया और मेहरबानी करते हुए हम सब अपनी अपनी यात्रा में बस चलते चले जा रहे हैं। यात्रा जो रोजमर्रा की जिंदगी से निकाले खुद के लिए कुछ सुकून के पल हैं, और हर इंसान अपनी जिंदगी में यात्रा तो करता ही है। आखिर किसका मन नहीं करता कि फिर से नई उमंग से जीने का, फिर कोई मन में ऐसी चाहत कि हम आकाश में उड़ें, या फिर किसी पंछी की तरह पे जी लगा के ऊपर और ऊपर उड़ते चले जाएं, है ना। मन भी तो उड़ान भरता है। कई बार मन ये भी कहता है कि सागर की गहराइयों में जाकर के मोती ढूंढ लाएं। कोई पहाड़ की चोटियों पे खुद को तलाशता है, तो कोई जीवन के इस आपाधापी में पगडंडियों पे लड़खड़ाते गिरते फिर से संभलते हुए खुद को

खोजता हुआ आखिर हम सब यही तो चाहते हैं कि बस चलते रहें, चलते चले जाएं, है ना। और इसी बीच में ये एहसास भी होता है कि ये जो हमारी अपनी अपनी यात्राएं हैं, इसमें हमें जब कोई मिलता है तो कभी हमराही बनता है, हम सफर बनता है, और कई बार यूं भी एहसास होता है कि हाँ वो शायद रात से शुरू हुआ जो सफर था सुबह तक हमारे साथ चलेगा।

संवार लीजिए। हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 4:25 और ठीक 42 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे ये है अरुणिमा। अरुणिमा जो हमें कहती है, और हम इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि रात को सोते समय दिमाग की जो उलझने थी, जिसने हमें जकड़ के रखा था, शायद सुबह होने तक वो सब उलझने खुद ब खुद सुलझ चुकी होती हैं। सोए रहने के दौरान मन न जाने कहां कहां भटका होगा, लेकिन एक अनजानी दुनिया में इधर से उधर, उधर से इधर होते हुए फिर से एक सुहानी सुबह पे खड़ा हो जाता है। ये और बात है, क्यों कुछ न कुछ सवाल हमारे जहन में फिर भी अटके रहते हैं, जिनके जवाब अगली पहर हम फिर से ढूंढेंगे, है ना? उन सवालों को ताक

ख्याल तो बड़े सारे आते हैं, लेकिन कोई ख्याल जब मुकम्मल होता है तब जाके पता चलता है कि हाँ वो ख्याल जो था वो कितना हसीन था। और उसके बाद एक और ख्याल, फिर ऐसा लगता है कि हमें ना सोचने की, जो हमें अच्छा लगता है उसको सोचने की आदत पड़ जाती है। और जब भी समय रहता है खाली, तो कई बार हम सोचते हैं कि चलो हम वही वाला प्यार प्यार, वही वाला सच सच, या फिर वही वाली कहानी फिर से याद करें, कभी खुली आंखों से तो कभी बंद आंखों से।

कई सारी ऐसी धुनें होती हैं जो हमें याद रहती हैं और उन धुन को हम समझने की कोशिश करते हैं और उसके साथ गाते भी हैं। कई बार लफ्ज याद नहीं रहते, कई बार धुनें भी समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी सब कुछ इतना जाना पहचाना लगता है, यूं लगता है कि ये तो कुछ ऐसी चीज है जो बरसों पहले हमारे पास थी, अब अचानक एक बार फिर से हमें याद आई है। 4:32 और ठीक 38 सेकंड हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में। ये है अरुणिमा। और इसके अलावा जो चीज़ हमें बड़ी अच्छी लगती है वो ये कि मन इतनी सारी चीज़ें ढूंढते ढूंढते और इतनी सारी चीज़ें अपने आप से कहते कहते न जाने क्या क्या चीज़ें और भी समेटता चला जाता है और उन गुत्थियों के लिए यही छोड़ता है कि चलो इसको अभी संभाल के रख लेते हैं और उसके बाद आगे बात करेंगे। अब आप इसको परेशानी कहिए या आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ तो है जो दिल के करीब है और उसको सुलझाने की हमारी कोशिश रहती है।

मिला करो हमसे। लेकिन ये भी सच है कि होता है असर बातों में, वो भी खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। ये तो बात आप मानते हैं, पर हर एक सांस मुझे खींचती है उस तरफ। कभी कभी क्या ये एहसास होता है कि कौन है बेकरार हमारे लिए? अगर ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज और साया बन के उभरती है, और वो ये कि कहीं ये सब चीजें झूठी तो नहीं, एक गलत फहमी।

कमी तो नहीं, हमारा सिर्फ एक ख्वाब तो नहीं, सिर्फ एक बात तो नहीं। और जैसे ही सुबह होती है हम उसको फिर से रख देते हैं। चलो आगे आने वाले टाइम में फिर बात करेंगे।

वो लड़की अच्छी लड़की है, तुम नाम न लो हम जान गए, वो जिसकी लंबी गेसु है पहचान गए पहचान गए। हाँ साथ हमारे इंशा भी इस घर में थे मेहमान गए, पर उससे तो कुछ बात न की अनजान रहे अनजान गए। ये बातें झूठी बातें हैं ये लोगों ने फैलाई हैं, तुम इंशा जी का नाम न लो इंशा जी सौदाई हैं।

दिन और रात कितनी दूरी है लेकिन फिर भी लगता है कि दोनों बहुत करीब हैं। दिन और रात दोनों में कितना अंतर है लेकिन कुछ न कुछ दोनों का एक दूसरे में जुड़ा हुआ है। और जब दोनों मिलते हैं तो शायद कभी कभी तो ऐसा होता होगा ना, जैसे कि गुलाम अली साहब की गजल है।

चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन तुम अच्छे लगते हो। और अब बताओ कि तुम कैसे हो। ये ख्याल अपने आप में बड़ा शानदार है। फिलहाल तो बजने वाले हैं 5, समय हो रहा है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। इस बीच नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिमी सिबी जॉर्ज ने कल नॉर्वे के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित स्वागत समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्रालय

0: सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री जॉर्ज ने भारत और नॉर्वे के बीच सशक्त तथा बहुआयामी साझेदारी पर जोर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने सीमा पार आतंकवाद के प्रति भारत के शून्य सहिष्णुता की नीति को दोहराया और आतंकवाद के खिलाफ नॉर्वे के सहयोग की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आर एन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में स्थानीय तथा क्षेत्रीय चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। इंग्लैंड में 136 परिषदों की करीब 5000 सीटों और 6 मेयर पदों के लिए वोट डाले गए। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया है। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata today. He is scheduled to attend a meeting with the newly elected BJP MLAs, during which the party's legislative leader will be selected. The Governor of West Bengal, R. N. Ravi, dissolved the Legislative Assembly of West Bengal yesterday. The new Chief Minister of the State and the Council of Ministers will be sworn in tomorrow on the birth anniversary of Kabir Guru Rabindranath Tagore. In Keralam, the decision on the Chief Minister will be announced by the Congress High Command in New Delhi after consulting reports submitted by AICC observers. KPCC President Sunny Joseph said a resolution empowering the AICC President to select the Congress Legislative Party leader was unanimously adopted at the Legislative Party meeting held in Thiruvananthapuram yesterday. KPCC President Sunny Joseph said the observers who will return to Delhi will submit their findings to the national leadership of the party. In Assam, the BJP-led NDA government will take oath for a third consecutive term on the 12th of this month. A high-level preparatory meeting regarding the swearing-in ceremony was held in Guwahati yesterday in the presence of senior BJP leaders. Addressing a press conference after the meeting, State BJP President Dilip Saikia informed that the oath-taking ceremony will be held at the Veterinary College playground at Khanpara in Guwahati. He said Prime Minister Narendra Modi will attend the event as the chief guest. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chaired a brainstorming session with officials of Department of Commerce and Department for Promotion of Industry and Internal Trade in New Delhi. In a social media post, Mr. Goyal said that discussions focused on boosting exports and investments, unlocking opportunities for aspiring exporters and tapping new global markets.

भोर सुहानी 5:11 और ठीक 34 सेकंड हो गए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। और भोर हमेशा सुहानी ही होती है, कभी गौर कीजिएगा रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह इतनी रौनकें लेके आती है कि अपने आप से ही लगता है कि शायद पूरी चारों तरफ जो प्रकृति है वहाँ से दुआएं निकल रही हैं।

किस्मत मुकद्दर की कर दो। उफ, कुछ लाइनें इतनी अच्छी होती है ना कि लगता है कि उस लाइनों में इबादत है, और उन लाइनों को पढ़ने के बाद ही यूं एहसास होता है कि जो शायद हमने दुआ मांगी थी वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि कई बार हमारे पास हम जो चाहते हैं उसके लिए अल्फाज नहीं होते, और जब वो अल्फाज मिल जाते हैं तब लगता है कि हाँ, यही वो वाली बात है। भोर सुहानी है ये।

और इन मधुभरी हवाओं को महसूस करने के लिए सुबह उठना पड़ता है, जी हाँ, और तब जाकर के आपको वो फ्रेशनेस नज़र आएगी और एक उत्साह समझ में आएगा कि हाँ आखिर सुबह उठने के लिए इतना जोर क्यों हमेशा से दिया जा रहा है। कुछ तो बात होगी इसमें।

ढूंढिए ढूंढिए, ढूंढने से कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं मिलती, मिलती है ना। और अगर आशा और विश्वास की बात की जाए तो असल में वो तो मृग तृष्णा है एक तरह से। मतलब हम जितना ढूंढेंगे उतना आगे चले जाएगा, भागते जाएगा, या यूं कहें कि एक मणि है जो हमारे अंदर छुपी हुई है और उसके बारे में हमें मालूम ही नहीं है। ध्यान से एक लंबी सांस लेते हुए आराम से बैठिए। सुबह सुबह की जो हवा है, सुबह का जो सूरज है, उसको देखिए। प्रकृति के साथ जितना हो सके उतना तारतम्य बिठा के उससे बात करने की कोशिश कीजिए, तो आशा और विश्वास दोनों आपके आजू बाजू होंगे और आप महसूस करेंगे इस बात को कि हाँ, ये बात कितनी अच्छी है। भोर सुहानी है ये आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे।